0: जय। श्री श्री माधव कृष्ण भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: जय बोले भोले बाबा की। सो इन शिव पुराण व्हाट एवर टॉक्स द सुस्तानी पुराण आल्सो द सेम थिंग एज आई मेंशन बिफोर इन इन टीचेस अस हाउ वी कैन रिमेन ऑल द टाइम इन अ डीप स्पिरिचुअल वैल्यू द लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड वी केम इन दिस यूनिवर्स दैट फॉर अ शॉर्ट लाइफ सो इट इज सेइंग दैट इन स्काई व्हाट एवर लाइट गिव्स बाय द स्टार that much wide place it can see. That's why in our life also, whatever divine divinity or purity we can maintain, that much purity we can carry with us. So every stories, every philosophy, every that the information teaches us these things here. So that's why whatever you meant, the change your vision, visuality, तो शिव पुराण हमारे लिए और सारे वेदादि वेद क्या करता है कि हमारे लिए जीवन कैसा सरल बनाना है और शिव जी की तरह कैसा रहना है। और शिव जी ने बोला है कि मैं कल्प कल्प में आवश्यकता के अनुसार कभी ब्रह्मा बन के, कभी विष्णु बन के और कभी शिव बन के मैं क्या है कि संसार को चलाता हूँ। तो कभी कभी मेरा भूमिका रहता है ब्रह्मा का, कभी विष्णु का, कभी क्या है तो कभी रहता है शिव का। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई विभेद नहीं है और शिव से विष्णु बड़ा, विष्णु से ये बड़ा वो हो ही नहीं सकता, ब्रह्म एक ही है। तो इसलिए ब्रह्म एक है तो सबसे बड़ा शैव कौन है कि नारायण है, सबसे बड़ा वैष्णव कौन है कि फिर शिव जी है। वो तो हमने बारंबार बोलते ही आया है, सारे शास्त्रों ऋषि मुनि संतगण महात्मा सारे समय समय में उपदेश देते आया है इसके लिए। फिर भी जब संदेह रहता है तो संदेह क्या है कि इस कार्य बिगाड़ देता है, संदेह ही क्या है कि धर्म का नुकसान करने वाला है। तो इसलिए संशय आत्म विनश्यति ही, तो किसने बोला है तो भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि तो संशय करोगे तो उसमें क्या होता है कि आत्म द्रविड़ हो जाता है, मन बिगड़ जाता है। सो व्हाट एवर यू फॉलो ट्रस्ट, व्हेन यू ट्रस्ट देन डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल फॉर यू। इट इज सेइंग दैट we always celebrate Hanuman Jayanti, isn't it? So Hanuman is a bhakta of Rama. We always celebrate Hanuman Jayanti. But in similarly, Arjun also the very close friends and bhakta also the Krishna. So why we cannot celebrate Arjun Jayanti? Because Hanuman is a devoted person. He never doubt. So he always respect and honor. There was no doubt for him. God exists or not. There is always he believe and trust. So that's why we celebrate the devotion of Hanuman. That's why we call it Hanuman Jayanti. But do we celebrate Arjun Jayanti? No. Because Arjun also devotee. But he always doubt. He's asking, oh, what will happen? Oh, the Lord Krishna, I cannot fight. Oh, the Lord Krishna, you said meditate. But how can we meditate? And you said one time, that go and marry and remain in a dharmacharya. This is a confusion. So I'm in confused. So, and that's a continuously sarva dharman parityajya mamikam saranam braja. So Bhagavad Gita chapter 18 verses 66. Sarva dharman parityajya mamikam saranam braja. Aham tvam sarva pape bhyo moksha ishyami masujaha. So Bhagavad Gita ke 18 अध्याय के 66 श्लोक में जो लिखा है वो भी क्या है कि सर्वधर्मान मतलब कि कोई भी चीज आपका जो दानवीय चीज है, कोई भी असुर तत्व है, सबको छोड़ के एक निर्वित्त होकर मानवीय धर्म ब्रह्म धर्म में निर्लिप्त हो जाइए तो उसमें क्या है कि आपको बहुत से मुक्ति मिल जाएगा। इफ यू सरेंडर दैट चैप्टर 18 वर्सेस 66 भागवत गीता सेज इफ यू सरेंडर विदाउट एनी डाउट definitely you will go, you will cross the river. If you doubt, then it will not be. That's why it is saying that it increases faith also. And for the faith, that many stories is comes, many things comes. So that's why there is theories. One is, you remain happily without doing material gain, with balancing material gain, or it's like a Charvak Siddhanta, the Charvak theory. The Charvak theory says like Yavat jivet sukham jivet Rinam krivet gritam pivet Vastri bhutasya dehasya punaragaman kutaha. That means Yavat jivet sukham jivet. As long as you live, live happily. Enjoy, drink, dance, and no matter you have debt or not, then effort ghee. Ghee means like nectar. Enjoy your life. But that Charvak's theory is that said. But in spirituality, it says like there is a great nectar. If you have the addiction of divine, you don't need to enjoy for wine. So in you can enjoy with divine. The divinity, spirituality is really good. So that's why it says like trust and follow the Shiva Purans. It says like from Rudra Samhita to this, we can summarize, when we summarize that, the Tulasi's devotions and how can it helps this society to unite husband and wife, society and family to family. This is the one of the wonderful story. And secondly, we can learn this one, great devotion, deep devotion without any doubt. Where is doubt, cut it out and continuously you follow. And later on, finally, it is saying that the Brahma is Vishnu and Mahesh, the Trigona, proton, neutron and electron. They merge together whenever it necessary. And no matter whatever powerful demon, whatever the power you have got, one day that will be cessation. So that's why, that's the story from the Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga to now it's a discontinue. This is the wonderful story we studied in Rudra Samhita. And almost we finished 43 chapters of this Rudra Samhita, Panchama Yuddha Khanda, which is wonderful. And I think today we need to conclude this one. So, aaj ke liye aaj humne kya sun liya ki Rudra Samhita mein पहले से अभी तक क्या हुआ कि पार्वती जी का डिवोशन तो हमने सुन लिया था. ऐसे करके जालंधर को कैसा विष्णु भगवान ने परास्त करने के लिए वृंदा को सतीत्व हरण करना पड़ा, और सतीत्व हरण करने के बाद में उनका पति धर्म नष्ट हो गया. पति धर्म नष्ट होने के वजह से क्या है कि जालंधर दानव मर गया. इसलिए पति बीच पत्नी बीच के जो धर्म होता है वो बहुत शक्तिशाली रहता है. आप कहीं भी रहो, जैसा भी रहो, कि जो शंखचूड दानव के लिए भी कौन थी बलवान, तुलसी का व्रत था. तो ऐसे करके फिर शिव जी के लिए पार्वती थी और विष्णु भगवान के लिए लक्ष्मी, जालंधर के लिए वृंदा,

जब तक उनको पतिव्रता धर्म रहा था तो सदा वो अमर रहे। इसलिए आज के सोसाइटी में, समाज में तुलसी का महत्व क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से पीपल के महत्व के बारे में आज चर्चा किया है। शिव पुराण के अब इस समय में हमको साराम समय प्रस्तुत करने का समय आ गया, तो कल हमारे लिए बहुत अच्छा ऐसे ही प्रसंग आ जाएगा। आप लोग जरूर से आना सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, और शाम को चार बजे से लेकर छः बजे तक ये शिव पुराण महात्म्य हो जाता है। ये महात्म्य तीर्थ स्थान में बैठकर श्रवण करने का इसका महत्व तो अलग रहता है। आप कहीं भी हो तो इसके लिए आप क्या है कि याचना करके आ जाइए, शरीर मन तो पवित्र हो जाता है, जन्म जन्म के पाप भी दूर हो जाता है। तो इसीलिए तो शिव भगवान का दृष्टि उनके पवित्र सोर शब्द से हम इस्तेमाल करते रहे, जुड़ते रहे। जय बलिए सत्य सनातन धर्म की जय।

0: नानक की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की जय। अलकपुरी जी महादेव की जय। ओम शांति ओम शांति ओम। ओम नमो श्री प्रभु। ओम इज ऑलवेज व्हाट वी नो।
1: ओम ये तो जो poznáme už।
0: ओम नमो। नमो मीन्स आई बो डाउन।
1: नमो znamená skláňam sa।
0: आई बो डाउन टू thy सेल्फ माय महाप्रभुजी।
1: Skláňam sa pred tebou, Mahaprabhuji.
0: Om namo Sri Prabhu. Sri is the knowledge.
1: Sri predstavuje poznanie.
0: Prosperity.
1: Prosperitu.
0: Good health.
1: Dobré zdravie.
0: Everything. Sri, všetko. Om and Sri.
1: Om a Sri.
0: This mantra

0: नारायण हम सब दास प्रभु शरण परायण सिक्स सो कंटिन्यू
1: a pokračujte.
0: Five times more.
1: Ešte 5 krát.

जब लक घट में प्राण। दया, दया मीन्स मर्सी, कॉम्पेशन, लव। दया धर्म का मूल है। धर्म मीन्स राइटनेस, अचीवमेंट, प्रिंसिपल। अहिंसा परमो धर्मा, द हाइएस्ट प्रिंसिपल इज ए नॉन वायलेंस। फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, पॉलिटिकली, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। इफ यू टॉक बैड अबाउट समवन और दैट, दिस विल कम बैक टू यू। सो यू शुड बी लाइक ए लाइट। व्हेन यू टर्न ऑन द लाइट, डार्कनेस इज गॉन। देयरफॉर लॉर्ड लेट मी बी लाइट इन डार्कनेस, सो दैट आई वेर एवर कम आई मे इनलाइट द हार्ट्स ऑफ अदर्स। धर्मा, विदाउट धर्मा दिस फ्लावर्स विल नॉट ग्रो, विदाउट दैट धर्मा द फ्रूट्स विल नॉट कम। दैट्स कॉल्ड सनातन धर्म, द यूनिवर्सल प्रिंसिपल। एंड हाउ टू अचीव दैट, अंडरस्टैंड दैट, इज कॉल्ड दया। उस फॉर द दया वी हैव टू फॉलो दैट धर्म, मर्सी। विच धर्म डिड दैट मदर्स फॉलो? दो दे वर सफरिंग, बट दे डिडंट गिव अप देयर मर्सी। दया धर्म का मूल है पाप, मूल अभिमान। एंड द रूट्स ऑफ द सिंस इज ईगो। आई विल डू, आई विल डू, दे विल सी, इट विल सी, आई। दैट इज द पार्ट ऑफ द इग्नोरेंस एंड सफरिंग। ग्रेट स्वामी शिवानंद जी सेड इन हिज वन ऑफ द नाइस पोएम, विद इन यू इज द मर्सी ब्लिस ऑफ द ओशन, एंड विद इन यू इज द फाउंटेन ऑफ द जॉय। किल दिस लिटिल आई एंड लीड डिवाइन लाइफ। सो आई इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एंड व्हेन द ईगो इज, वी कैन नॉट सरेंडर, वी कैन नॉट बी हम्बल, एंड वी थिंक वी आर द ह्यूमंस, वी कैन डू एवरीथिंग। यस, यू कैन डू एवरीथिंग, बट यू हैव टू देन सफर एवरीथिंग। इट विल मल्टीप्लाई लाइक ए स्नोबॉल। यू नो व्हाट मीन स्नोबॉल? डू यू हैव हियर स्नो? ओ वेरी गुड। सो व्हेन यू मेक ए स्नोबॉल एंड लेट इट रोल फ्रॉम द हील डाउन, इट गेट्स मोर एंड मोर स्नो, कैचेस एंड बिकम स्मॉल बॉल, बिकम्स बिग वन। दैट्स वी कॉल स्नोबॉल। सो एवरी एक्शन विल हैव अ रिएक्शन, एंड एवरी रिएक्शन विल हैव एक्शन। डजंट मैटर यू बिलीव और नॉट, बिलीव और नॉट बिलीव डज नॉट

श्री श्री देव पुरुषा महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान अलकपुरी जी सिद्ध पीठ की सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति शांति।

गैने धारा पैसा ही इज नॉट रनिंग बिहाइंड द माया द प्रॉपर्टी और वट एवर अवर बर्डली थिंग्स भव भंजन भगवान सदा ही भव भंजन ही हैव नो फियर इज वन लाइक स्काई भंजन ऑल द टाइम्स भजन भजन भगवान सदा ही इज दैट इज अ गॉड फॉर एवर ताके कर्म कटे कर्म कलेशा कटे मीन्स कट ही कट्स द ऑल कर्म एंड कलेशा कर्म मीन्स अवर कर्माज एंड कलेशा मीन्स अवर फाइटिंग्स ऑल ही विल गिव अस द रिजल्ट एंड वी विल बी इन द पीस हंस उबारण जग में आया शुभ अवतार धरेशा टू लिबरेट द स्वान मीन्स दिस आत्मा भक्तास यू आर ऑल स्वान पीसफुली बैठे हो वेरी नाइस पीसफुल यू आर सिटिंग लाइक ए वेरी पीसफुल स्वान यू नो मी टू या एंड महाप्रभु जी विल डेफिनेटली लिबरेट हंस उबारण जग में आया ही केम इन दिस वर्ल्ड टू लिबरेट ऑल दिस स्वान्स दिस भक्तास प्यार भक्तास भगवान कृष्ण सेड टाइम टू टाइम आई इनकार्नेट विथ माय योग माया एंड आई सेव लिबरेट माय भक्तास एंड किल द राक्षसास द नेगेटिव एनर्जी So, Asuri Shakti and Devik Shakti. And that's why all avataras in their hand, good things and weapon though, both. I remember many times Guruji said, in my hand, in one hand I have ladu, big ladu. In other hand I have stick. What do you want? I said, ladu, then sit down and learn. That's it. Yes? Don't do stupid things? Yes? So, Hans Ubaran Jagme Aya Shubh Avatar Dharita. And therefore, his incarnation is Subha, the best, the good. Sri Deep Kahe Guru Dev Namami. Mahaprabhuji said, Sri Deep. गुरुदेव महाप्रभु जी सेड गुरुदेव नमामि माय एडोरेशन प्रणाम टू गुरुदेव बारंबार आदेशा एंड अगेन माय एडोरेशन टू दी ओ गुरुदेव दीप नारायण भगवान की देव पुरुष महादेव की माधव कृष्ण भगवान की

सतगुरु ऐसा राम ऐसा गुरु ऐसा राम ऐसा दीप नारायण भगवान की देवेश्वर महादेव अलकपुरी जी महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म ओम शांति शांति।

0: Come a little back. Thoda. मेरे पप्पी से आओ यहाँ मेरे पास में. अब दोनों एक साथ साथ रहो बेटा. और मास्क निकल निकाल दो. साइड करो स्लो. थैंक यू.
1: श्री प्राण भगवान की जय. देवेश्वर महादेव की जय.
0: थोड़ा दूर है.
2: हिंदुगम सम्राट सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की जय.
1: श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमन स्वामी महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय.
2: Without Guru, we cannot know Brahma, Vishnu, Mahesh. Actually, Guru is not only Brahma, Vishnu, Mahesh. Guru is also Par Brahma, Parameshwar. Om.

वन डे माता पार्वती सेड टू शिव जी, यू आर गॉड ऑफ गॉड, बट एवरी टाइम यू आर मेडिटेटिंग, हु इज योर गॉड? शिव जी सेड, माई गॉड इज माई गुरु.

0: पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित परिभज काचार्य ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री श्री श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय।
1: देवपुरी समादेव
0: की जय।
1: माधवानंद जी भगवान
0: की जय।
1: दीप नारायण भगवान
0: की जय।
1: अलकपुरी जी महादेव
0: की जय।
1: भारत माता की
0: जय।
1: जय वाह।

लेकर के और कबूतर को मार के आ जाओ, लेकिन उस जगह जाकर के मारना कि कोई उसको देखे नहीं। एक गया बाथरूम में जाके उसकी गर्दन काट के आ गया। ले गुरुजी, क्या किसी ने देखा? क्या नहीं, किसी ने नहीं देखा। दूसरे को कहा, ले भाई तुम भी तरह जा। वो गया बाथरूम में, गया वापस आया कि गुरुजी आपने कहा कि कोई नहीं देखे वहां, लेकिन मैं तो देख रहा हूं, तो तेरे आंख पट्टी बांध ले जा। पट्टी बांध के गया वापस, फिर आ गए वापस के, गुरुजी आपने कहा कोई नहीं देखता है, मेरे तो आंख के पट्टी बांध दी, लेकिन कबूतर तो देख रहा है कि मैं उसको मार रहा हूं, कि उसकी भी पट्टी बांध दे। गए वापस, जाकर के वापस आ गया कि गुरुदेव मेरे आंख के पट्टी बांध दी, कबूतर की आंख की पट्टी बांध दी, लेकिन भगवान तो देख रहा है, भगवान की आंख मैं कैसे बांधूं? तब कहा, तू पक्का चेला है बेटा, तुम्हारे को मंत्र दीक्षा देंगे। और उसको कहा, ला इधर कबूतर को, उसको गुरुजी जिंदा करके उड़ा दिया। तो उसी प्रकार, दैट इज ए स्टोरी अबाउट अ पिजन एंड यू नो ऑल। तो फर्स्ट दैट गॉड नोज व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू वांट, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट यू वांट टू डू इट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरा इस हॉल के अंदर में जो है वो जानता है, और वो ये है, आप खुद जानते हो। तो भगवान जानता है और आप जानते हो, ये दोनों ही जो है इसी हॉल के अंदर में, इसी आश्रम के अंदर में जो बैठा है वो कर रहा है। तो उसी प्रकार जब मनुष्य का, व्हेन द ह्यूमन सॉल इंटर्स इनटू द ह्यूमन बॉडी, गॉड गिव्स अस द फ्रीडम, बट देन इट इज लाइक दैट यू विल बी बाउंडेड टू द कर्मा, एंड दैट कर्मा व्हाट वी कॉल द एक्शन, वेयर द एक्शन इट विल बी रिएक्शन, और वेयर द रिएक्शन देयर विल बी द एक्शन। गुड रिएक्शन इज गुड एक्शन, गुड एक्शन इज गुड रिएक्शन, बैड एक्शन गुड एंड बैड, पाप एंड पुण्य केवल मनुष्य के साथ में होता है। जब मनुष्य द ह्यूमन इफ दे डू नॉट फॉलो द प्रिंसिपल्स, देन द ऋषि मुनीस दे गेव दिस रूल्स, पूर्णिमा, ग्यारस, अमावस्या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दिस डेज इज कॉल्ड द होली, एंड ऑन दिस डे यू शुड नॉट डू। एंड सो इन इंडिया, इन आवर कल्चर, एंशियंट कल्चर्स, नाउ दे आर डिफरेंट। इन दिस कलियुगा, इन दिस कलियुगा दे आर मोर डिफरेंट रिलीजन्स, एंड एवरी रिलीजन्स दे हैव मेड देम सेल्फ। सो देर इज अ कॉल मैन मेड गॉड, मैन मेड रिलीजन एंड गॉड मेड रिलीजन्स। द गॉड मेड प्रिंसिपल्स एंड मैन मेड दिस, मैन मेड वर्ल्ड इज नॉट परफेक्ट, बट गॉड मेड वर्ल्ड इज ए परफेक्ट। देयरफॉर इन दिस प्रिंसिपल्स ए ह्यूमन डे एंड नाइट बाय ईच एंड एवरी स्टेप, बाय ईच एंड एवरी लुक, वी शुड नो व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम थिंकिंग, सो दैट आई विल बी परफेक्ट, आई विल पास एज ए ह्यूमन। देन दिस सॉल विल गो टू द ब्रह्मलोका, अदरवाइज समवेयर जितना कर्म है
उस कर्म के आधार पर

0: फिर हम आएंगे. सो दिस सिटी जयपुर इज अ वेरी स्पिरिचुअल सिटी एंड डे आफ्टर टुमारोज आर 14th यू ऑल यूरोपियंस आर हियर आई थिंक यू शुड गो एंड सी द फेस्टिवल ऑफ द श्रावण तीज इन जयपुर. होता है कि नहीं? कब है वो? कब है? तारीख कौन सी तारीख है? 13 तारीख को है क्या? 14 को नहीं, वो तो एक कम दूज भेड़ी हो गई ना. 13 तारीख को एंड सोमवार. आई थिंक दिस पीपल शुड स्टे हियर. देयर ऑल रोड्स आर ब्लॉक्ड एंड यू गो टू सी दैट फेस्टिवल ऑफ दिस डे. इट कम्स वंस ए ईयर दिस फेस्टिवल. इट इज ए फेस्टिवल ऑफ द डिवाइन पार्वती एंड शिवा. यस, सो यू शुड आई थिंक डोंट मिस दिस. इट विल बी वेरी नाइस. देयर मेनी फॉरेनर्स आर देयर, मेनी पीपल आर देयर. इज ए ब्यूटिफुल फेस्टिवल, ब्यूटिफुल. सो डोंट मिस दिस. पर हैप्स समवन ऑफ वी हैव हियर गाइड. We will ask the guide that he can bring you there as a tourist. And something, I think you should do it. In the morning till the noon. Itna hai na? Dupair mein. Aha. From 3, 2 to 5 afternoon, and then you should come to the Kailash. Well, I am not talking about my birth. But somehow it happens. It is coincident. So this is the day of my birthday. Exactly on that time, so I was also born on Shravan ki Tees. And that day is a special thing they have. So people are trying to bring me this, they did not know. But that is a different thing for children to eat. But each and every event which is according to the spirituality, the culture, tradition, and environment, and the what we call the for the environment, the culture of trees, what we call वृक्ष लगाते क्या कहते ना? वृक्षारोपण तो है. हरिओम हरिओम, हाउ आर यू? ठीक हो? टुडे इज माय बर्थडे. तो जा कहाँ रहे हो? इतना जल्दी मोमेंट मोमेंट. कुछ लेके जाओ, कुछ लेके जाओ. ये लो, ये वो कहा है? बेस्ट वन. ओके, दिस इज द बेस्ट वन. तो इतनी जल्दी में क्यों?
1: घर जाके
0: आते तो फिर ठीक है. सो इट इज लाइक दिस दैट आई थिंक बाय द डिवाइन, बाय द ऋषिज एंड टू प्रोटेक्ट द ह्यूमंस एक्शन towards spiritualities and not go towards the negativities. Now negativities come now too much. Meat, alcohol, But in this

भगवान की सत्य सनातन धर्म की मात पिता गुरुदेव की ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सो आई टेल यू फर्स्ट दैट व्हेन वी आर हियर प्रैक्टिसिंग ऑल वेरी गुड those who are sitting in the front and other is backside, then they don't know they are looking like this and they are like doing. To inko dono behno ko ek taraf lagao next time. Kyun aata hai bhai? Aisa hai ki aap ya to yahan se aake bitha do ya wahan se. Aap do baithe ho to piche wo log bhalai yun dekhe aur phansa yun kare. जरा बस मैं कहूँ कि अरे सोनी भाई बैठ रहे, मैं तो हमें ठीक है, हमें थोड़े थाने कटे उठाऊँ कभी, आज कल कराऊँ आज तो इसीलिए सत्संग सत सत और संग सत सत क्या क्या है, कितना है, क्या है, कैसा हुआ है, तो वो सत सत उसको कैसा आ जाएगा और नहीं रह जाएगा। सत्संग तो कहता है कि संग किसके साथ रहे, संग किसके साथ में रहना है, जो दे आर गुड एंड दे लाइक एवरीथिंग एंड दे आर हेल्पिंग एवरीबॉडी, दैट इज कॉल्ड सत्संग। The sat, sat.

0: is the good things, bad things, everything. Satsang, then it is said, please come with me. We stay all together. We all be together like one. Yes. Then it is okay. Otherwise, other sitan like this, aage yu kare, phir aage bade bade aadmi hota hai na. Wo bade bade ka matlab wo nahi keh raha hu. Uska kya naam jo thoda choto aadmi hai nahi, wo to baitho aage. Aur moto moto baitha aadmi to wahan se aap dekh sakte ho. And if you're not this like that, then they are looking always this side. फिर वो करता है ऐसा तो वो कैसा करे फिर वो इधर करे फिर वो ऐसा करता तो सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न हु शुड बी हियर फर्स्ट एंड देन सेकेंड एंड लाइक दिस देन वी हैव ऑल तो इस सत सत क्या है वो सत कहाँ है वो सत कहाँ से आया है सत केवल मनुष्य के लिए ही नहीं है जानवरों का भी है वो भी आता है तो उनके बच्चा होता है और वो बड़ा है तो बच्चे को आगे आगे लेकर के बैठती है छोटे होते हैं ना ऑल चिल्ड्रन सो तो ऑल पीपल दैट एवरीवेयर दे टेल टू देम देयर मदर यस मदर बट Where make the child? Yes, in my like this. Even that. Then it is said, yes, this is very good. So child is going front and mother is behind. Taki the children can be with mother very nice and that. And not going out. Then what happens is something. So sat, wo satya hota hai. सत्य ही सत्य है सत्य ही सत्य है वही सत्य कहा जा गया है तो सत्संग और वो संग किसके है कि सभी के एक साथ सभी को किस बट अदर वन वी विल गो दिस एंड बट गो टू सिट लाइक दैट सो व्हेन वी कम यू शुड कम फर्स्ट ऑलरेडी वेयर यू आर सिटिंग सो Very nice. Satsang. तो सत्संग के बारे में एक भजन लगाओ एक भजन लगाओ सत्संग का सत्संगियों की सत्संगियों की सं है ना भजन अपना बाप जी का है ना हाँ तो लगाओ तो बेटा बाप जी का माधवानंद जी का है भाई माधवानंद जी भगवान सारे विश्व में पधारे हुए हैं वो भी और महाप्रभु जी जब भी इधर उधर जाते हैं तो कितनी जगह एक आज यहाँ बैठे हैं तो कल वहाँ बैठ गए वहाँ नहीं तो वो बैठे तो मेरा देश है ना यहाँ पर मेरा देश बहुत बड़ा है यू डोंट नो सो मैनी कंट्रीज है मैनी कंट्रीज बट दे आर सिटी सिटी कंट्रीज है बट अ वेरी बिग वन आर लाइक फिफ्थ इज आवर हमारा तो इतना वो जो है दैट वॉटसन इज कमिंग फ्रॉम थेट फार फ्रॉम दिस वेयर इट इज वाटर एंड इन वाटर में देयर स्टिल वी आर अवर लैंड इज अवर लैंड वेरी मच यू नो दैट इट वॉज दैट टाइम वेल दिस ऑल द क्रिश्चियंस और दूसरे भी जो है ना दे come inside and they talk the Indians all like this so don't go home no school jana dena kuch karna nahi tha only those who are learning very people so they were like doctors and this or this otherwise all people was abhi bhi aapko le rahe hain abhi bhi unko barabar nahi jane dete hain तो फिर कितना करते करते मोदी जी के नहीं मोदी जी क्या दूसरे तो वहाँ शिफा कितना लटक करया किया या किया, वो वहाँ कहाँ पर बैठे रहे, लेकिन भगवान की कृपा से ऑल एवरी वन दे ब्रॉट दी ऑलरेडी टू इंडिया। सो इंडिया का कितना वेरी बिग बिग बिग, आई हैव नॉट सीन एवरीथिंग। इंडिया इतना लंबा चौड़ा है, आई वॉज नॉट गिव, आई वेंट टू अदर कंट्रीज, बट आई सी somebody this and that, but how many countries have there, and all have different language, many language hai Bharat mein, lekin unhone sab karke hindu bataya, aur hindu kahan se, hindu bahut dur se hai ye, kya nahi, हिंदू कहाँ का, किसको कहते हैं बताओ, हाँ है, नहीं संस्कृत में तो है, हाँ सिंधु, हाँ तो सिंधु तक का है हमारा, इसमें आया है तो देखा ही नहीं है ना, तो अभी हमारे क्या आगे इस साल में ऐसे आगे इन लोगों ने मुसलमान आगे खूब करा दिया वो है, लेकिन वो तो हिंदी मुस्लिम्स जो है, मुस्लिम के उनके वो नहीं है कुछ भी, बहुत बस है दिखता है उनको, और उसके आगे भगवान ही है बस, और किसके ऊपर है ही नहीं, और दूसरे कोई भी है क्रिश्चियंस है वो है हिंदुओं है उनके सबका है, तो वो जितने मुसलमान हैं तो पहले हमारे हिंदू थे, सब हिंदू हैं, लेकिन हार्ड टू डू दे मैनी थिंग दिस, सो देयरफॉर वी नो दैट एवरीथिंग दैट इन माय कंट्री, एंड वेट माय कंट्री दैट व्हेन आई गो टू द एयरपोर्ट एंड देन इज एवरीवेयर, या सब आई एम कमिंग ऑलवेज विद एरोप्लेन्स, यस एंड आई सी देयर फ्रॉम दैट आई सी इट अवर इंडिया, हमारा इधर से, सो दैट ऑल माई डिसाइपल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज दे हैव ऑल अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड दे प्रैक्टिस ही ऑल द टाइम्स एंड कमिंग, डोंट वेरी दे आर नॉट, बट वी वॉन्ट टू कम टू हियर। स्वामी जी है महेश्वरानंद ने, तो मैं महेश्वरानंद को मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ नहीं करता था अब तो, लेकिन वो ही कर रहे हैं मेरे लिए, हाँ पहले मैंने कराया, बट इस एंड आई टॉल्ड देम बट इट डिडंट नो आई हैव डन एंड व्हाट डू यू व्हाट विल डू, एंड सो माय डिसाइपल्स दैट एवरी बर्ड इन द होल कंट्रीज होल वर्ल्ड कंट्रीज की, अब दे आर कम एंड मेड, सो इनका गवर्नमेंट इंडिया में कहते हैं कि महेश्वरानंद है वो, हमने को हिंदुओं को इसको बुलाया है, हुआ है तो वैसे ही करना चाहिए, और मैंने कभी नहीं कहा इनको कि इन्हें हिंदू करो मैंने किसी को ना कहा कि हिंदू बोलो, नहीं आप क्रिश्चियंस को बोलो, आप उसको बोला आपका, लेकिन बोलो कैसा क्या करो ये बात है, नहीं तो मैं अगर ये इतना तक नहीं नहीं मैं तो हम मुसलमानों को इनका नहीं करेंगे वो, और मैं रहूँगा तो फिर पड़े रहे हो गए, वो तो आगे भी पीछे में, बट नाउ द मैनी पीपल हैव हमारे डिसाइपल्स हियर ऑल दे कम्स, दे आर नॉट कमिंग हियर फॉर वर्किंग हियर, दे आर कमिंग फॉर महाप्रभु जी के, और महाप्रभु जी देवपुरी जी का वो जो है, that is the first, and so Madhavananji he went he from his house, from his house he went out, it was only like this, and he brought Mahaprabhuji jo hai, he came to my village, to my mother, and here my was staying in my house, And there was one very nice person in Rupavas mein, aur wo thoda matlab theek nahi tha to dheere dheere chalte the, but he was no very great standing, very great. वो महाप्रभु जी के पास आए थे तो वहाँ बिठा दिया कि बैठो और पढ़ाओ. तो बाप जी के वो नहीं थे इतना, छोटा से ही थे बाप जी महाप्रभु जी. एंड वो आते थे देन घर पे आते थे, फिर वो आते वो बैठते थे. तो माधवानंद जी, अवर स्वामी माधवानंद जी बाप जी ने निपला हमारे रूपावास से, रूपावास में रखा है. रूपाव में बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे अभी भी है, अच्छा ही है, लेकिन वो थोड़ा अब डब चबड़ गया हो गया यूँ से भी जगह है. हाँ लेकिन वो नहीं होगा, वो हो जाएगा, वो अच्छा ही होगा, वो भी अच्छा होगा. और ये हमारे आश्रम में तो ये देखिए कि मेरे रूपावास गांव हैं, तो रूपावास कंट्री इज द जहाँ जहाँ वेर एवर आई एम इन अदर कंट्रीज, वेरी मेनी कंट्रीज. तो वेर आर यू गोइंग टू रूपावास? यस माई नेम इज रूपावास इन द होल वर्ल्ड. 18 गांव वाले रूपा है वो नहीं जाने, लेकिन वो मेरा रूपावास गुजरात वो वगैरह से भी हो, लेकिन हमारे रूपावास. तो वो ठेठ तक जब भी मैं जाता हूँ कि कौन से महेश्वरानंद का है कि कहाँ रूपावास, और वो चल रहा है. अब वो छोटे मोटे लोग हैं उसमें तो कुछ होता ही है ना, और होना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या पता करें. तो इसीलिए सारे संसार के अंदर मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य ही है. अब किसने वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया है, सबका नाम दिया कि किसका नाम है, कौन है रे कि मैं मनुष्य हूँ. बस अब हम मनुष्य है. तो मैंने कई बार कहा यहाँ से और करा दिया है और करूँगा कि अब हम नहीं कहेंगे कि ये किस जाति का है. जाति हमारी एक भारत की है और वो सभी को उसी को करूँगा मैं, आप देख लेना. हाँ ठीक है, आप लोग मेघवाड़ हो, गरग से हो, जो भी हैं सभी हैं, वो है ही है, लेकिन है वो मेरा मनुष्य, मेरे देश का. तब देख लेना उसकी आगे में लगा देंगे ऐसा उल्टा आ जाएगा. हाँ है कि नहीं, प्रेमानंद जी ने. हाँ प्रेमानंद जी कहाँ हैं? ये प्रेमानंद जी. अच्छा प्रेमानंद जी तो हमेशा इसका प्रेम, इसका नाम ही प्रेम, प्रेम की बोलो. हाँ तो वो इनका है प्रेमानंद जी का. प्रेमानंद जी का इतना बहुत गांव देश है, और देश में गांव बहुत बढ़िया है, और पहाड़ों के ऊपर में भी नीचे सभी जगह है, और इनका मकान या इतना बड़ा है, उसके अंदर में बहुत बड़े उनके उनके माता पिता जी का है. ओके लेकिन आप देखेंगे इनको, देखेंगे कितना इसका मकान कितने बड़े छुटे हैं, कितने वृक्ष है, अभी भी खूब वृक्ष है प्रेमानंद जी का. तो प्रेमानंद जी आए मेरे पास में, मैं गया था कहीं, तो ये भी आए, एक बार आए दो गए फिर वापस आए. और ये प्रेमानंद जी का बहुत प्रेम है, प्रेम की बोलो. श्री दीप नारायण भगवान की जय.
1: श्री मारवानंद जी सद

तरह भगवान की जय। श्री विश्वगुंदा शाह परम स्वामी मर्शन गुरुदेव की जय।

कोटि परनाम फलक प्रभुवीनति सुख सागर नीचनाम नामलिया सभा परे आनंद होतय पार आप सतगुरु में शीर्ष हो आप हम प्राणाधार परमहंस गुरुदेव चीति नवोक के देव सुरनरमि सब संत जनानि तव तकाता से।

इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतम श्री रुद्राष्टकम शिवार्पणमस्तु। बोलिए भगवान श्री अलख पुरुषा महादेव की जय। देव पुरुषा महादेव की जय। दीप नारायण भगवान की जय। माधवानंद पुरी सद्गुरुदेव की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद पुरी सद्गुरुदेव की जय। निर्वाण सटकम

बोलिए भगवान श्री अलखपुरीशा महादेव की जय, श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री देवपुरीशा महादेव की जय, श्री माधवानंद भगवान की जय, विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद पुरी सद्गुरुदेव की जय, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य।

0: की जय।
1: जय
0: माधव कृष्ण भगवान की
1: जय।
0: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य परम योगिराज परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद ब्रज गुरुदेव भगवान की
1: जय।

0: की जय।
1: श्री माधव कृष्ण भगवान की
0: जय।
1: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की
0: जय।
1: आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी भगवान की
0: जय।
1: श्री काशी विश्वनाथ भगवान
0: की जय।
1: श्री गजानन जी भगवान की
0: जय।
1: सब ऋषि मुनि महात्मन की
0: जय। बोलिए भगवान श्री देवेश्वर महादेव की जय।
1: एक और
0: वेद सार शिवस्तव पशु

0: इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचित वेद सार शिवस्तव शिवार्पणमस्तु।
1: दीपनारायण
0: भगवान की जय।
1: देव पुरुषा
0: महादेव की जय।
1: अलक पुरुषा
0: महादेव की जय।
1: श्री माधव कृष्ण
0: भगवान की जय।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव
0: भगवान की जय।
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय।
1: ओम नमः
0: पार्वती पतये हर हर महादेव। संभ

बड़े श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री मांगिया जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडल स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

बोली श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देव पुरी जी महादेव की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परहंस श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री आलकपुरी जी महादेव की जय। सत सनातन धर्म की जय। ओम।